0: வந்தே மாத்திரம்.
1: சுஃபலாம் மலயஜ சீதலாம் சஸ்யஷா.

1945 ज्येष्ठ माह की नवमी तिथि तदनुसार सन 2026 मई महीने की दिनांक 24 और दिन है रविवार। श्रोताओं, आपसे लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि के 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को आज आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। पहुंचाने के लिए प्रसारण निष्पादक श्री थुतन टाशी, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता मिस शिखा डेका और श्री तानिंग तको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अंतु कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक श्री लोबसंग तोप्तन तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका कारमू। हम सभी आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में स्वागत करते हैं।

मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आशिक संवाद 1900

मीडियम एफ 197.92 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के तवांग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे केंद्र से आज के तमाम कार्यक्रम आरंभ होती है। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आप सुनिए अब से ही थोड़ी देर बाद यानी दोपहर के ठीक 2 बजे मिट्टी न्यूज तथा 2:15 पर आप सुनिएगा दोपहर समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: in Paris. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
3: These would be the principles with which we would approach that region.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
4: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच

0: व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रही हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करसियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी @90 मैराथन का आयोजन किया। करसियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करसियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है।

0: वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिओ फेईहुंग ने शानशी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के योगी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को

0: कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे मिडडे न्यूज तथा दोपहर समाचार। मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। डीजी श्रोता अब पेश है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए लामा थुतन जम्बा से बर्चे लमसिल, सस सुम्मा, तन बर्मा, लबचंग गेलतेनमा, जवा मुनलम, जबके थुचे, जंग शंबाला मुनलम। डीजी पेश है कार्यक्रम वंदना।
2: 也莫我那叫的我 这是人间没把人经验了北京就用结巴研究结巴解决将会多久我要人马接了是吧上巴人也多巴人经验过年老老新巴看啊突击北京生家养了马里老别生家真别你们都个生家大业这种人间没别的多久 我要人马接了是吧上巴人也多巴人经验了顶个你们他拉特别哪里光芒的北京等了你的家的当了基地阳光最近的是我是这些大姐这边多姐我要人马接了是吧上巴人也多巴人经验我要他妈这些你妈 深圳人马他们人马东啊人马就了东啊人家爹爹的那大爹都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那都接爹的那 삼바르니야 우야 삼바라니야

贴着门，我压着马家拉萨吧，牛三八平年多半的几年，南昌这边这边这，西街这边就把年把那一年三八的几年。

마귀에다가 선전한 바 대전한 바 이녀 선발을 지니나 우연 돌지 권하던 바 심화 대제 선전 동화

Tata tama jaji kune

Yeah,

大概人家这点都不是，强行的我手机打电，当兵去那就多这边，家就干了把这家边，家境刚咱来讲起了，不当求你把这求你。

0: 啊，谢谢你啊，对上这边啊，最近啊，那点的叫啊，路上啊，找吧，大妈有两百元钱哟。
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लमा थुतन जम्बा से बोध भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं। डीजी श्रोताओं, अब प्रस्तुत है अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। अलग अलग प्रांत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए गायक भूपेन हजारिका से चंद असमिया फिल्मी गीत। डीजी श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद असमिया आधुनिक गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यू ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत।

श्रोताओ, इसी असमिया गीत के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। डीजी श्रोताओ, अब पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पीएम श्री जेनवी स्कूल तवांग के 11वीं कक्षा की छात्र मिस जुम्बा लटुन से।

0: परंपरा और आधुनिक के बीच संतुलन विषय पर चंद शब्द।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं जुम्बा लाटोन, पीएम श्री जेनवी तवांग में कक्षा 11वीं की छात्रा। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन है। दीपों की लौ में उम्मीद जलती है, संस्कारों की खुशबू हर दिल में पलती है। परंपरा वो धरोहर है जो समय न मिटा पाए, संस्कृति वो रंग है जो हर युग में छा जाए। परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना 21वीं सदी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, जिससे मानव जीवन का संपूर्ण विकास संभव है। भारतीय समाज की पहचान उसकी समृद्ध परंपराओं और तेजी से बढ़ती आधुनिकता के मेल से बनती है। परंपरा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, जबकि आधुनिकता हमें समय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। परंपरा हमारे संस्कारों, रीति रिवाजों, भाषा, संस्कृति और मूल्यों की वाहक होती है। यह हमें नैतिकता, पारिवारिक एकता, गुरु शिष्य परंपरा और सामाजिक जिम्मेदारियों का बोध कराती है। यदि हम परंपराओं को पूरी तरह त्याग दे तो हमारी संस्कृति पहचान कमजोर हो सकती है और समाज दिशाहीन हो सकता है। दूसरी ओर आधुनिकता विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, समानता और स्वतंत्र सोच का प्रतीक है। आधुनिकता ने जीवन को सरल, तेज और सुविधाजनक बनाया है। स्त्री पुरुष समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डिजिटल विकास और वैश्विक संपर्क आधुनिकता की ही देन है। यदि हम आधुनिकता को न अपनाएं तो समाज प्रगति की दौड़ में पीछे रह जाएगा। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम परंपरा और आधुनिकता को एक दूसरे के विरोधी मान लेते हैं। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमें ऐसी परंपराओं को अपनाना चाहिए जो मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देते हों, और उन रूढ़ियों को छोड़ना चाहिए जो विकास में बाधा है। इसी प्रकार आधुनिकता को अपनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों को नष्ट ना करे। अंत में आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आज के बदलते समय में केवल परंपरा या केवल आधुनिकता पर निर्भर रहना उचित नहीं है। यदि हम परंपरा को पूरी तरह अपनाएं और आधुनिकता को नकार दे तो प्रगति रुक सकती है। इसीलिए दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। मिट्टी की महक त्योहारों का रंग संस्कृति में बसता है, जीवन का रंग। परंपरा हमें जोड़ती है पर पीढ़ी से ये बंधन अमर है हर एक सीरीज से। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पीएम श्री जेनवी स्कूल तवांग की 11वीं कक्षा की छात्र मिस जुम्बा लाटन से परंपरा और आधुनिक के बीच संतुलन विषय पर चंद शब्द। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर

के 3:33 हुए हैं। लीजिए श्रोताओ, हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। इस कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म लुटेरा से, मोनाली ठाकुर के आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा संगीत पद पर इस गीत को लिखा है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है गुरु रंधवा और जनिता गांधी की स्वरों में फिल्म सिमरन से। गीत वायु के है, वह संगीत

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म दोस्ताना से। सुनिधि चौहान, शंकर महादेवन और विशाल ददलानी की आवाजों में इस गीत के गीतकार है कुमार तथा संगीतकार विशाल और शेखर।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है फिल्म हिचकी से। गायक अरिजीत सिंह के स्वर में राज शेखर के लिखे बोल पर इसे संगीत दिया है जसलीन रॉयल ने।

0: श्रोताओ, फिल्म हिचकिच के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। लीजिए श्रोताओ, अब हम आपकी खिदमत पर लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनिए फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से, गायक आतिफ असलम के स्वर में। आशीष पांडे के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

Shining sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me. श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए, विशाल ददलानी, पायल देव और किशोर कुमार के स्वरों में, फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। इस गीत के गीतकार हैं आनंद बख्शी तथा संगीतकार आरडी बर्मन।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, अक्षय त्रिपाठी द्वारा शब्द रचना पर फिल्म नोटबुक से विशाल मिश्रा की आवाज में, और इस गीत को संगीत से सजाया है गौरव वसानी ने।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म मुन्ना माइकल से। विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान के स्वरों में कुमार के रचे इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल और शेखर ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, गीत मंजरी कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म बैंग बैंग से हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाजों में। अन्विता दत्त के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है विशाल और शेखर ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्म झुक झुक जियो से। यह गीत कनिष्क सेठ और कविता सेठ के आवाजों में, ट्रेडिशनल की लिखी इस गीत को संगीत दिया था कनिष्क सेठ ने। श्रोताओं, कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म बूथ वन से, अखिल सचदेवा और मशील गुजराल के स्वरों में। इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार है अखिल सचदेवा।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में फिल्म केदारनाथ से। अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा कलमबद्ध पर इस गीत को

श्रोताओं, फिल्म केदारनाथ के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए अब पेश है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए आर के सूर्यनारायण से वीणा वादन। लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आरकी सूर्यनारायण से वीणा वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अब यही पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी शाम की 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तालु याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पूर्ण मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिवांशु पांडे ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में

रेलवे ट्रैक के पास विस्फोट में 24 लोग मारे गए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी के महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्र सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान है। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि आधिकारिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण है और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईंधन संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहे। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रही है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती है। दोनों नेताओं ने खारी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो ने भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमरीकी के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री कल 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश का नाम बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दूध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दूध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी 890 मैराथन का आयोजन किया। कार्सियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना दिया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी के 90 वर्षों की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कार्सियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी।
दी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में

0: उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत में अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट में से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी की मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। धमाके के बाद एहतियाती के तौर पर पेशावर जाने वाले जफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को भी अभी भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शाउन शी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शाउनशी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंट को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रू सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेट्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के जानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए हैं। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विविकरण से संबंधित निर्णय लिए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. The news read by Shabrashachi Bhattacharji. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio today held wide-ranging discussions in New Delhi. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlining key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Dr. Jayashankar said India and the U.S. share a comprehensive global strategic partnership with deep and broad-based cooperation. He said both countries' ties impact and influence the world and that they have converging interests across several regions. He noted that discussions took place in a complex global environment and expressed confidence in open and productive talks. He also

मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओ, अब पेश है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। तो आइए पहले हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों से। अब से ही थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम शेदोन लरिम के अंतर्गत ग्यांगोंग अनी गुनपा के उमजे अनी थुतन छजंग से न्यूंगनिक छोगा का शेष भाग 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार शाम के 7:05 पर। शाम के 7:10 पर सुनिएगा कवाली गीतों का कार्यक्रम महफिले कवाली। इसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे फिल्म बजरंगी बाईजान से अदनान समी और फिल्म जॉली एलएलबी 2 से सुखविंदर सिंह मुस्तफा और कादिर मुस्तफा के स्वरों में चंद कवालियां। शाम के 7:27 पर सुन पाएंगे सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे कोंकणी भाषा में गीत और पाठ।

आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज शाम के 7:50 पर। शाम के 7:55 पर सुनिएगा एक देशभक्ति गीत। आज रात 8 बजे का वक्त रहेगा। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए सदाबहार चंद पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन 8:30 पर, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि की ठीक 9 बजे सुनेंगे न्यूज एट 9। तो श्रोताओ, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 25 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से।

आज रात 8 बजे का वक्त रहेगा। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए सदाबहार चंद पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन 8:30 पर 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि की ठीक 9 बजे सुनेंगे न्यूज एट 9। तो श्रोताओ, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 25 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाना की तरह कल हमारी सभा आरंभ होंगे दोपहर के 2 बजे मिट्टी न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 पर भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना, इसके अंतर्गत आप सुन पाएंगे चंद हिंदी भक्ति गीत, 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। विभिन्न प्रांत के इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे बेंजिया हेमंता, ताना तरम तारा से निशी आधुनिकेत। दोपहर के 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे पीएम श्री जेएनवी स्कूल तवांग के 11वीं कक्षा की छात्र मिस जुम्बा लटन से परंपरा और आधुनिक के बीच संतुलन विषय पर चंद शब्द। कल दोपहर के 3:33 का वक्त रहेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे फिल्म टाइगर जिंदा है से ज्योति नूरन, फिल्म आजा नशले से सुनिधि चौहान, फिल्म मेरे ब्रदर्स की दुल्हन से नेहा बसीन, फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से उदित नारायण और फिल्म आरक्षण से मोहित चौहान और श्री कुशाल के स्वरों में चंद गीत। कल दोपहर के 3:50 पर आप सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। इस कार्यक्रम में कल आप सुन पाएंगे फिल्म बुलचुक माव से जुबिन नौटियाल के स्वर में, फिल्म बवाल से विशाल मिश्रा और जरा खान के स्वर में, फिल्म श्रीकांत से जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार के आवाजों में, फिल्म हसीन दिलरुबा से अभिजीत श्रीवास्तव के स्वर में, फिल्म योद्धा से विशाल मिश्रा के आवाज में, फिल्म द्रौपदी से परंपरा टंडन के स्वर में, फिल्म सुरमा से दिलजीत दोसंझ के स्वर में, फिल्म सैयारा से विशाल मिश्रा और हंसिका परीक के आवाजों में, फिल्म बागी फोर से जोश प्रर और परंपरा टंडन के आवाजों में, और फिल्म पेदी से मोहित चौहान के आवाजों में चंद गीत। कल दोपहर के 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग, 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। शाम के 5 बजे नामथर लेरिम, रोजाना की तरह दैनिक मुख्य सूचना मनपा में कल शाम के 5:30 पर, शाम के 5:35 पर सका दवा के अवसर पर मुंद्रती एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा बुद्धा पार्क तवंग में आयोजित 6 दिवसीय धर्म शिक्षा कार्यक्रम, कल शाम के 6 बजे लेडिम सेरा, 6:10

पर कार्यक्रम जरोखा कल शाम के 6:20 का वक्त रहेगा। ग्यांगोंग आनी गुनपा के उमजे आनी तेंजिन छजंग और साथियों से न्यूंगनिक छोगा का शेष भाग कल शाम के 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा शाम के 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। शाम के 7:10 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान केंद्र तवंग डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी से कोल फसलों की वैज्ञानिक खेती के तरीके विषय पर भेंट वार्ता कल शाम के 7:30 पर सुनिएगा। कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे फिल्म बाघ मिलका बाघ से जावेद बसीर, फिल्म सुल्तान से राहत फतेह अली खान और फिल्म ऊंचाई से अमित त्रिवेदी के आवाजों में चंद गीत। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा शाम के 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम के 7:55 पर आने लीजिएगा एक देशभक्ति गीत का फिल्म राजी से आतिफ असलम के स्वर में। कल रात के 8 सुनिएगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी नगमों का। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि के ठीक 9 सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी जानकारी के साथ ही कार्यक्रम झरोखा अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 6:20 पर मनपा में कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: Lagina Stata, Lunching Gang, Tawang, Nomingodun, Shindun Lirima, Gangong, Anni Gonbak, Anni, Tupden Chisang, Umzesi, Kotinangu, Nunir Choga, Tang San Mejakmar, Mutias and Number, Lagina Udebga, Teshnup to Lunching Gang, Tawang, Monbak Lirimba, Nachazang Dudur, Langi Samba, Nobdu Suze, Nisondur, Lagina Dao Shuje, Nai, Hindiga, Segun in Shuje, Injiga Segur, Lunching Gang, the Liga Susan Nansa.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Tanvi Khurana. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio strongly underscored the strategic dimension of the partnership, describing India as one of the United States' most important partners in the world. Mr. Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting, which will be held on 26th of this month. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has registered a landslide victory in the Trinamool Congress Bastion Falta Assembly constituency. Mr. Panda won the seat by over 1,09,000 votes. Falta's seat was widely regarded as the stronghold of Trinamool Congress. Communist Party of India Marxist candidate Shambhunath Kurmi finished in second place with over 40,600 votes. Congress candidate Abdul Razak Mola came third and Trinamool

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम कवाली आइए सुनिए। विशाल खुराना द्वारा संगीत निर्देशन पर फिल्म जॉली एलएलबी 2 से जुनैर वासी के रचे इस गीत को स्वर दे रहे हैं सुखविंदर सिंह, मुर्तुजा मुस्तफा और कादिर मुस्तफा।

0: श्रोताओ, इसी के साथ ही कव्वाली गीतों का कार्यक्रम महफिले कव्वाली अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:25 हुए हैं। लीजिए अब आप सुनिए सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए कोंकणी भाषा में एक गीत और पाठ। गीत रमेश वलुस्कर के है, वह संगीत सोमनाथ चारी का, और इसे सिखा रहे हैं माया सुखधनकर ने।
1: बच्चों, आज हम आपको कोंकणी में एक गीत सिखाएंगे। आज हमारे साथ माया जी आई हैं, वे आपको ये गीत सिखाएंगे। आपको पता है ये गीत किसने लिखा है? ये गीत लिखा है श्री रमेश वेलुस्कर जी ने, और संगीत दिया है श्री सोमनाथ चारी ने। ये रचना राग किरवानी पर आधारित है। अच्छा बच्चों, पहले कागज पेंसिल निकालो और गाना लिख लो। शुरू करें। हिमगिरी रे, हिमगिरी रे, दो बार हिमगिरी रे, हिमगिरी रे, उत्तुंग तू, मुक्त तू, उत्तुंग तू, मुक्त तू, हिंद माये, हिंद भुये, मुकुट तू, हिंद माये, हिंद भुये, मुकुट तू। फिर से हिमगिरी रे, हिमगिरी रे। अब ये पहला अंतरा। मुक्त तुझे हड्डे आनी, मुक्त तुझे माथे, मुक्त तुझे हड्डे आनी, मुक्त तुझे माथे, निळ्या मळबा कडे आसा तुझे नाते, निळ्या मळबा कडे आसा तुझे नाते। और फिर से हिमगिरी रे, हिमगिरी रे। अब ये दूसरा अंतर। मुक्त तुका चोन हावी जाता मुक्त, मुक्त तुका चोन हावी जाता मुक्त, आनीक वठार जुळटा मुक्तताये सुक्त, आनीक वठार जुळटा मुक्तताये सुक्त। और फिर से हिमगिरी रे, हिमगिरी रे। अब ये तीसरा और आखिरी अंतरा। धीरे तुझे हड्डे आनी, धीरे तुझे हड्डे आनी, धीरे तुझी शान, धीरे तुझी शान,

0: देखो, धीरे तुझे हड्डे आनी, धीरे तुझी शान, काळजानी ह्या फुलचो, काळजानी या फुलचो हिंद अभिमान, हिंद अभिमान। और फिर से हिमगिरी रे, हिमगिरी रे। अच्छा बच्चों, आपने इस गीत को ठीक तरह से लिखा है ना? अब इस गीत को किस प्रकार गाना है यह आपको माया जी सिखाएंगी।
1: बच्चों, ये गीत दीपचंदी ताल में निबद्ध है। इसका ठेका इस प्रकार है, धा धिन धा धा तिन, ता तिन धा धा धिन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार। गाने की पहली पंक्ति लड़के और लड़कियां दो भिन्न प्रकारों में गाएंगे और दूसरी पंक्ति सब मिलकर दो भिन्न प्रकारों में एक साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रथम लड़कियां।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कोंकणी भाषा में एक गीत और पाठ। गीत रमेश वलुस्कर के थे व संगीत सोमनाथ चारिका, और इसे सिखा रहे थे माया सुक्तनकर ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी शाम के 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादुयाजो। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना है। साथ ही इन क्षेत्रों के सतत विकास, किसानों के कल्याण और आजीविका में सुधार के लिए भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत 32 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख परियोजना का उद्घाटन करेंगी और उनकी आधारशिला रखेंगी। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने जनता को आश्वासन दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भर में पेट्रोल, डीजल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की उपलब्धता पर्याप्त और बिना किसी रुकावट की बनी हुई है। कंपनियों ने सूचित किया है कि अरुणाचल प्रदेश में समग्र आपूर्ति की स्थिति स्थिर है। संपूर्ण ईंधन आपूर्ति श्रृंखला, जिसमें टर्मिनल, प्राथमिक थोक भंडारण डिपो, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, खुदरा बिक्री केंद्र और एलपीजी वितरक शामिल है, बिना किसी बाधा के काम कर रही है। दैनिक खेप निर्धारित समय पर भेजी जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के हर जिले में पर्याप्त भंडार बना रहे। इस बीच उपभोक्ताओं के से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सामान्य खरीदारी की आदतें जारी रखें और घबरा कर ज्यादा खरीदारी करने या जमाखोरी करने से बचें। जनता को आगे सलाह दी गई है कि ईंधन की उपलब्धता के बारे में प्रमाणिक और सत्यापित जानकारी के लिए वे केवल तेल विपणन कंपनियां द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। केंद्र सरकार ने वीबीजी राम जी एक्ट 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर अपनी आपत्तियां या सुझाव विचारत प्रस्तुत कर सकती है। आकाशवाणी संवाददाता की रिपोर्ट है कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट में 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का स्थान लिया है। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने कल नई दिल्ली के मानिक शाह सेंटर में सेन विनियंस की वार्षिक बैठक में भाग लिया। सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र और पहले बैच के सदस्य राज्यपाल ने कहा कि सैनिक स्कूलों ने अनुशासित, देशभक्त और सेवा भाव वाले युवाओं की पीढ़ियों को तैयार करके राष्ट्र निर्माण में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि चरित्र

0: अनुशासन, नेतृत्व, शैक्षणिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय भावना पर उनके जोर ने ऐसे जिम्मेदार नागरिकों को गढ़ने में मदद की है जो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के विजन की ओर आगे बढ़ रहा है, सैनिक स्कूल अनुशासित नेतृत्व राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के भविष्य की रक्षा व आगे बढ़ाने में सक्षम एक मजबूत पीढ़ी के निर्माण में महत्वपूर्ण संस्थान बने रहेंगे। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज ईटानगर में ट्रिम्स फैकल्टी एसोसिएशन के कार्यकारी निकाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। बैठक का विवरण साझा करते हुए उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि संस्थान फैकल्टी के कल्याण, शैक्षणिक माहौल और मेडिकल कॉलेज के समग्र विकास से जुड़े मामलों पर रचनात्मक चर्चा हुई है। इस बीच श्री मेन ने आश्वासन दिया कि वे उठाए गए सभी मुद्दों पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाएगा और राज्य में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सेवाओं को मजबूत करने के व्यापक हित में आवश्यक कदम उठाएंगे। दो अरुणाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी तवांग ने कल जवाहरलाल नवोदय विद्यालय तवांग में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर CATC-19 को सफलतापूर्वक संपन्न किया। तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के कुल 164 एनसीसी कैडेटों ने इस 10 दिवसीय शिविर में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इस शिविर का आयोजन कैडेटों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। शिविर की गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF द्वारा युवा आपदा मित्र योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Shobhasachi Bhattacharya with regional news. Indian Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Rajiv Ranjan Singh will chair the regional review meeting for the Northeast region tomorrow in Aizawl, Mizoram. The meeting will primarily focus on reviewing the progress of various schemes and programs being implemented in the fisheries, animal husbandry and dairying sectors across the NE region. Discussions will also be held on future strategies for sustainable sectoral growth, farmers' welfare and livelihood enhancement. During the meeting, the minister will inaugurate and lay the foundation for key projects amounting to over 32 crore rupees under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana and Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund. The public sector while marketing companies, Indian Oil, BPCL and HPCL have assured the public that the availability of petrol, diesel and liquefied petroleum gas, LPG, remains adequate and uninterrupted across Arunachal Pradesh. The companies informed that the overall supply positions in the state is stable. The entire fuel supply chain comprising terminals, primary bulk storage depots, LPG bottling plants, retail outlets and LPG distributorships is operating without disruption. Daily dispatches are proceeding on schedule to ensure that every district in the state remains adequately stocked. Meanwhile, consumers are requested to continue with their normal purchasing pattern and to refrain from panic buying or stockpiling. Heavy rainfall continues to create havoc across Upper Subansiri district of Arunachal Pradesh, causing severe damage to roads, bridges, houses and agricultural properties. As per reports, the Chetam Guha PMGSY road has suffered major damage after a 13.5-meter Assisi bridge span over the Neokaro River between JK and Niling collapsed completely, disrupting connectivity and causing immense hardship to commuters and local residents. Meanwhile, the Meteorological Center Itanagar has forecast an orange alert for Siang, Upper Siang and Tirap districts in Arunachal Pradesh. These districts are very likely to receive thunderstorm with lightning and very heavy rainfall at isolated places today. Additionally, 15 districts including Bapumpare are in yellow alert zone. The government has published draft rules under the VVG Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry says that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. Akashvani correspondent reports that the Viksit Bharat G. Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MGNREGA 2005. The new act aims to enhance the statutory

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के ठीक 8 बज चुके हैं। डीजी श्रोताओ, अब पेश है व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है पद्मा टॉकीज नापानगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, खुशाल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, आश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह, आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म ताजमहल से यह गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है रोशन ने और इस गीत के बोल है जो वादा किया वो।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। मोरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप है मुकेश केशव, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह के पसंद पर। आइए आने लेते हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं से यह गीत नदीम श्रवण द्वारा संगीत निर्देशन पर, समीर के लिखे बोल पर इस गीत को आवाज दे रहे हैं अनुराधा पोडवाल ने और इस गीत के बोल है ओ मेरे सपनों की सौदागर।

श्रोताओ, अगला नगमा पेश करने की हमें गुजारिश की है दातारंगी बातापरा छत्तीसगढ़ से। आप है हीरामणि वर्मा, परिशमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। आप सबकी पसंद पर आई सुनते हैं फिल्म बादशाह से यह गीत, अभिजीत और अलका याग्निक के आवाजों में। समीर की लिखी बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है अन्नू मलिक ने और इस गीत के बोल हैं, हम तो दीवाना हुए।

किशोर कुमार के स्वर में मजरू सुल्तानपुरी द्वारा शब्द रचना पर इसे संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने, और इस गीत के बोल हैं हमें तुमसे प्यार कितना।

श्रोताओ, इस वक्त आप व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाइशी गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत। शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन कविता, करण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई, आप सबकी पसंद पर आइए सुनिए फिल्म कुदरत से यह गीत। गायक

श्रुतव कालिकम का अंतिम फरमाइश पेश है, मजनू का तिल्ला दिल्ली से कमल बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा। सतना मध्य प्रदेश से आप है उमंग मालिक, आकांक्षा मालिक और माही मालिक। आप सबकी फरमाइश पर पेश है फिल्म काला पत्थर से यह गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल आवाजों में। साहिर लुधियानवी के लिखे बोल पर इसे संगीत

श्रोतव, अभी आप आने ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमें पेश किए आप सभी की वत्सल फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक वत्सल जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपके फरमाइश पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी रात के 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स के।

8 बजकर 45 मिनट पर समाचार संध्या तथा रात्रि के 6:09 बजे सुनेंगे न्यूज़ एट 9। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह पक्की की, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला जारी। एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वॉश चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला आर्यवीर दीवान ने अपने नाम किया, शिवेन अग्रवाल और अनिका दुबे उपविजेता रहीं। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता उत्साह के साथ तीसरे दिन भी जारी, और अहमदाबाद में आयोजित हुआ संडे ऑन साइकिल का 75वां संस्करण। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां पर कई आज पदक देखने को हमें मिले। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज वियतनाम के दानांग में एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान के ओजोदबेक खालिमवेव को 12-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 55 किलोग्राम वर्ग में नीरज पटेल ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में कजाकिस्तान के रोआन बेकिमोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। रोहित बुरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के आर्टिक बेव अलिम्बेक उलू को 9-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं महिलाओं की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वीटी ने 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में न्योग लिंडो से 7-5 से हारकर रजत पदक अपने नाम किया। 59 किलोग्राम वर्ग में नेहा संगवान ने फाइनल में उज्बेकिस्तान की लेलोखोन सोबी रिवॉक से 9-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। वहीं 55 किलोग्राम वर्ग में अहिल्या शिंदे ने कांस्य पदक जीता। आज कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण तो कई ने कांस्य और कईयों ने रजत पदक अपने नाम किया। अगर हम देखें इस प्रतियोगिता में, तो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए देश के लिए कई पदक अपने नाम किए। बचे हुए मुकाबलों में इन खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्रिकेट की ओर, जहां पर टॉप चार के टीम जो है प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। जहां आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 205 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई 9 विकेट पर 175 रन ही बना सकी। इस मुकाबले के परिणाम के बाद प्लेऑफ की चार टीमें फाइनल हो गई। आरसीबी 18 अंक और बेहतर रन रेट, अगर हम आरसीबी की बात कर ले तो टॉप पर आरसीबी पहुंची है, जिनका नेट रन रेट 0.783 है। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस ने क्वालिफाई किया, जिनका नेट रन रेट 0.695 है। वहीं तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी, जिनका नेट रन रेट 0.524 है। उन्होंने 9 मुकाबले जीते हैं और 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं राजस्थान ने 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में

0: बना ली है। और अगर हम आगे के मुकाबलों की भी बात कर ले तो धर्मशाला में 26 मई को क्वालिफायर वन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। वहीं न्यू चंडीगढ़ में 27 मई को एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स मुकाबला करेंगे। वहीं कल एक और मुकाबला खेला गया था, हालांकि पंजाब किंग्स प्रतियोगिता से अब बाहर हो चुकी है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने आज अपना मुकाबला जीत लिया है, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन ने अगले साल के लिए कुछ उम्मीदें गाई हैं। कल लखनऊ में हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। सुनते हैं कल के मैच का हाल।
1: कल हुए मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लखनऊ ने 16 के स्कोर पर अर्शीन कुलकर्णी का विकेट गंवा दिया। निकोलस पूरन भी 2 रन बनाकर मार्को यानसन का शिकार बने। चौथे विकेट के लिए आयुष बड़ौनी और जॉश इंग्लिश ने 49 रन की साझेदारी की। आयुष ने 200 से अधिक स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 43 रन बनाए। कप्तान ऋषभ पंत और इंग्लिश ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला। कप्तान ने 26 रन की सदी हुई पारी खेली। वहीं इंपैक्ट प्लेयर जॉश इंग्लिश ने 44 गेंद पर बेहतरीन 72 रन बनाए। अब्दुल समद ने भी 37 रन का अहम योगदान दिया। लखनऊ ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए। पंजाब की ओर से मार्को यानसन और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। अजमतुल्ला उमर जई और शशांक सिंह ने 1-1 विकेट हासिल किए। प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर ने साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 76 गेंदों में 140 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया। प्रभसिमरन 39 गेंदों में 69 रन की पारी खेलकर आउट हुए। वहीं अय्यर 51 गेंदों में 5 छक्कों और 11 चौकों के साथ 101 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी के बदौलत पंजाब ने 2 ओवर शेष रहते सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाकर जीत दर्ज की। लखनऊ की ओर से मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर ने 1 विकेट अपने नाम किया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि हमने खिलाड़ियों को अपना नेचुरल गेम खेलने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था।
2: Honestly speaking, we didn't say anything. We just kept it simple. Rather than having meetings, putting more pressure on the boys, I think you kind of get lost in the previous losses when you discuss a lot. It's important that you let them be. You know, their free flow of mind is required, especially in crucial games, and you don't want to make them overthink in pressure situation. And today, I literally told Ricky that, you know, let's not do any team meeting. Let's just head to the ground and do our rituals, which we've been doing consistently, and we could see the result.
1: करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस बीच कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भी अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 125 रन बना लिए। हालांकि इस मुकाबले का अब परिणाम से कोई भी प्लेऑफ में अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए ये खिलाड़ी और ये जो टीमें हैं उम्मीदें जगाएंगी। अब सीधे रुख करते हैं स्क्वाश की ओर। 33वें एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला आर्यवीर दीवान ने अपने नाम किया। शिवेन अग्रवाल और अनिका दुबे उप विजेता रहीं। सुनते हैं इस प्रतियोगिता में अब तक भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन।
3: 33वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में आज लड़कों के अंडर 19 वर्ग में आर्यवीर दीवान ने खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। फाइनल में आर्यवीर ने कोरिया के ली जोंग हा युक को हराया। 3x4 सीड हासिल करने वाले आर्यवीर ने चीन के पंजुआ में आयोजित प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में मलेशिया के टॉप सीड निकलेश्वर मोगाना सुंदरम को 4 गेम में हराया। आर्यवीर ने पिछले साल अंडर 17 खिताब के लिए भी इसी मलेशियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में अनिका दुबे उप विजेता रही। अनिका दुबे को हार्लिन तान ने हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वहीं लड़कों के इसी वर्ग में शिवेन अग्रवाल शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता रहे। फाइनल मुकाबले में शिवेन को नुमान खान से हार का सामना करना पड़ा। अंडर 13 वर्ग में लड़कों में अमारिया बजाज को भी फाइनल मुकाबले में हार मिली। खिताबी मुकाबले में उन्हें लियोंग सांग से हार का सामना करना पड़ा। भूपेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये जो आर्यवीर दीवान और जो नई पौध है ये लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत का झंडा शान से लहरा रहे हैं। अब सीधे रुख करते हैं झारखंड के रांची।

0: की ओर, जहां पर सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज भी कई स्पर्धाएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन गुरिंदर सिंह वीर ने 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में नया कीर्तिमान स्थापित किया। मैच के बाद गुरिंदर वीर सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए।
1: लास्ट मिनट पे जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा, तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया और इसलिए मैं अच्छा भाग पाया और होपफुली आगे भी अच्छा करूंगा। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी, हार्ड ट्रेनिंग किया, बहुत चीजें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा, एंड्योरेंस की कमी थी, स्पीड एंड्योरेंस की कमी थी, हर चीज पे फोकस किया, ब्लॉक स्टार्ट को इम्प्रूव किया, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया। प्लानिंग यही है अभी, गो विद द फ्लो, मैं अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करूंगा, होपफुली भगवान ने चाहे तो कॉमनवेल्थ एशियन गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा।
0: और अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी रांची संवाददाता महवीश।
2: जी
0: महवीश, झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन का प्रतियोगिता जारी है। आज महिलाओं के वर्ग में हरियाणा और पंजाब का दबदबा रहा, इस बारे में क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
2: जी बिल्कुल, आज भी स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर था। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में हरियाणा की रवीना ने अपनी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के हैमर थ्रो मुकाबले में पंजाब की मनप्रीत कौर ने शानदार थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है।
0: जी, ये प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ खेलों के लिए चयन ट्रायल भी है। पुरुष हाई जम्प से देश के लिए क्या अच्छी खबरें नजर आ रही है इस प्रतियोगिता से?
2: जी आज तो हाई जंप में भारतीय एथलीटों ने कमाल कर दिया। सर्वेश अनिल कुसारे ने 2.28 मीटर की शानदार छलांग लगाई। उनके साथ ही आदर्श राम ने 2.22 मीटर की कूद लगाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए पदक की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं।
0: महवीश, ट्रैक इवेंट की अगर हम बात कर ले तो आज हर्डल्स यानी बाधा दौड़ में किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रही थी?
2: आज ट्रैक पर जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। रिलायंस के तेजस अशोक सिरसे ने मात्र 13.5 सेकंड का समय निकालकर एक नया मीट रिकॉर्ड कायम किया और स्वर्ण पदक जीता। उनके ठीक पीछे क्रिस्क एम ने 13.52 सेकंड के बेहतरीन समय के साथ रजत पदक हासिल किया। इन दोनों धावकों के बीच की टक्कर आज के दिन का सबसे बड़ा रोमांच थी। एक बड़ा धमाका पुरुषों के पोल वॉल्ट में भी हुआ, जहां मध्य प्रदेश अकादमी के देव मीना ने 5.42 मीटर की रिकॉर्ड तोड़ छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं महिलाओं की 100 मीटर हर्डल रेस में नंदनी के प्रदर्शन पर मुख्य फोकस रहा। इन दोनों एथलीटों ने अपनी श्रेणी में सबसे बेहतरीन खेल दिखाया है आज।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद महवेश, आपने ये विस्तृत हमें जानकारी हमारे साथ साझा की। अब सीधे बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन पर। पेरिस में आज से फ्रेंच ओपन टेनिस का आगाज हो चुका है। प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जैसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। वहीं कार्लोस अल्काराज चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। भारत की ओर से यूकी भांबरी और एन श्रीराम बालाजी भारतीय दल का नेतृत्व करते नजर आएंगे। महिला वर्ग में करमन कौर थांडी ने क्वालिफाइंग ड्रॉ में हिस्सा लिया था, लेकिन उनका सफर पहले दौर में ही समाप्त हो गया। यूकी भांबरी ATP डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 तक पहुंचने वाले वे सक्रिय भारतीय खिलाड़ियों में से सबसे आगे हैं। वहीं श्रीराम बालाजी अपने अनुभव और मजबूत नेट गेम के कारण भारतीय डबल्स टीम के अहम स्तंभ माने जा रहे हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में भारत की मौजूदगी की अगर हम बात करें तो भले ही सीमित हो, लेकिन यूकी भांबरी की शानदार फॉर्म, श्रीराम बालाजी का अनुभव और जूनियर खिलाड़ियों का उत्साह भारतीय टेनिस प्रशंसकों को भविष्य के लिए नई उम्मीदें दे रहा है। आने वाले दिनों में पेरिस की क्ले कोर्ट पर करोड़ों भारतीय निगाहें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। हैम्बर्ग में इग्नासियो बुसे ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए हैम्बर्ग ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने दुनिया के 26वें नंबर के अमरीकी खिलाड़ी टॉमी पॉल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। उधर SM कृष्णा मेमोरियल ओपन में आदिल कल्याणपुर और मुकुंद शशिकुमार की जोड़ी ने कल बेंगलुरु में SM कृष्णा मेमोरियल ओपन 2026 में डबल्स को अपने नाम कर लिया है। सीधे बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट पर। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चलाए जा रहे संडे ऑन साइकिल इवेंट के 75वें संस्करण का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। इसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी,

0: नेता आयुष्मान खुराना और ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग शामिल हुए। मनसुख मांडविया ने इस कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को फिट रहने का संदेश भी दिया। अब सीधे ले चलते हैं आपको कोलकाता, जहां पर आईपीएल का अंतिम लीग मुकाबला जारी है, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
3: We want peace and stability.
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हो, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
3: Importer of energy and much of it comes from that region.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
4: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी।

0: इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल

सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और डेली

0: magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tate Hakalu River in Uttar Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And in Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 9:15 हुए हैं और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। तो जाते जाते हम आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित

0: conditions to continue for the next 7 days. And in Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver, and 3 bronze medals in Vietnam. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 9:15 हुए हैं और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। तो जाते जाते हम आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल दोपहर के 3 बजे आप सुनिएगा विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। शाम के 5 बजे नमथर लेरिम कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण आप सुनेंगे कल शाम के 7:10 पर। शाम के 7:10 पर आप